प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आप जी अपने इस पवित्र शब्द दे विच ये विचार बख्श रहे हैं, जप हो ता एको नामा, अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम जपो, जे नाम नहीं जपते अवर निराफल काम, बाकी सारे काम निराफल और फ्रूटलैस हैं, उन्हां दा कोई भी फल नहीं है जे नाम नहीं जपते। इस करके दो पंक्तियां मैं आप जी दे सामने अर्ज कीतियां हैं। एक, नाम बिना नरक कहीं न लेख है। नाम तो बिना इंसान किसे कम दा नहीं है, किसे कम दा नहीं, किसे लेखे च नहीं। और दूसरी, नाम बिना सूना घर बार, नाम तो बिना ए शरीर रूप जो कर है ये बिल्कुल सुन्ना है, और इस दे जो गुण हन इस काया रूपी कर दे, वो नाम नु भुलाउण दे नाल हर बिसर तेरे गुण गले। महाराज जी ने ते बाणी च ए भी आख्या है,

अपने विचार अस्वारी कीजे। कहिंदे हुण तुसी अपने विचारां दे विच खोए पए हो, उन्हां नालों सैपरेट नहीं हो, विचार अते तुसी एक में खोए पए। विचार आंदा है तुसी उस दे विच रल जांदे। पर इत्थे टेक्निक ये दसी जा रही है कि अपने विचार अस्वारी कीजे, तुसी अलग हो जाओ विटनेस करन वाले, अपने आप नूं सेपरेट कर लो, स्पेक्टेटर बन जाओ, अते जो विचार है उन्हां दे उत्ते सवार हो जाओ। दैट यू कीप आई ऑन योर एवरी सिंगल थॉट द मिनट इट क्रीप्स इन एंड व्हाट इट डज इनसाइड यू, फॉर हाउ लॉन्ग इट स्टेज इनसाइड यू एंड देन हाउ द सेकेंड थॉट इज फॉलोड बाई। कहते ट्राई टू सी द होल प्रोसेस ऑफ थॉट्स कमिंग एंड गोइंग। अपने विचार अस्वारी कीजिए, स्नान करके चौंकड़ा लगा के एकांत दे विच बैठ जाओ, अते फिर अपने अंदर जिस तरह से बाहर कोई तुरिया फिरदा है उसनू देख सकते हैं, ख्याल भी तो अंदर तुरिया ही फिरदा है ना, ख्याल भी अंदर तुरिया ही फिरदा है। जिस तरह अपने मकान च कोई तुरिया फिरदा है, असी अलग चेयर ते बैठ के सिर्फ उसनू वाच कर सकते हैं। टेलीविजन दे उत्ते तस्वीरां चल फिर रही हैं, तुर फिर रही हैं, असी अलग चेयर दे उत्ते बैठ जाने हैं ते उस उन्हां नूं देखते हैं। इस तरह महसूस करो कि देयर इज अ ड्रामा ऑफ थॉट्स इज गोइंग ऑन एंड यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट, यू आर जस्ट विटनेसिंग। अपने विचार अस्वारी कीजिए, अपने विचारां दे उत्ते अस्वारी करो, भाव के उन्हां नूं इनडिफरेंट होके, उन्हां नालों अलग होके जस्ट वॉच दैम। सो पहली चीज तुसी की अचीव कीती है कि यू एंड थॉट हैव बिकम टू डिफरेंट थिंग्स, यू हैव टोटली डिसकोनेक्टेड यूअर सेल्फ फ्रॉम द थॉट्स। तुसी अपने आप नूं थॉट्स तो अलग कर ले, अपने विचार अस्वारी कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता की होएगा कि थॉट्स का ट्रैफिक आ रहा है, तुसी सिर्फ देख रहे हो कि थॉट आ रहा है ना, उस लई बुरा ख्याल बनाना, क्योंकि ख्याल बनाओगे तो ख्याल च उलझ जाओगे, ना उस लई चंगा ख्याल बनाना, कोई ओपिनियन नहीं फॉर्म करनी, थिंकिंग नहीं करनी, जस्ट प्लेनली वाच देम। सिर्फ उन्हां नूं देखना है। अपने विचार अस्वारी कीजे दा मतलब है कि अलग होके सिर्फ उन्हां नूं देखो। तुसी कोशिश करके करन दी देखो, कल तो सवेर तो, और फिर जदों भी वक्त मिले इस अभ्यास नूं करना है। अपने विचार अस्वारी कीजिए, थॉट्स तो अलग होके सिर्फ उन्हां दा जो फ्लो है उसनूं देखना है। जदों तुसी देखोगे, थॉट्स नूं देखोगे, क्योंकि तुसी थॉट दे नाल कोऑपरेट नहीं कर रहे, उस दे विच एनर्जी नहीं पा रहे, उस दे नाल ज्वाइन इन नहीं कर रहे, इस करके वो थॉट जो है उत्थे अपने आप ही सीज हो जाएगा। थॉट नीड्स योर कोऑपरेशन एंड योर टोटल इन्वॉल्वमेंट, तां थॉट जो है वो स्प्रेड हुंदा है, वधदा है, अगां वधदा है। जे तुसी उस दे नाल ही न रले तो थॉट उत्थे सीज होना शुरू हो जाएगा, और उस तो बाद तुसी देखोगे कि विद इन सैकेंड्स एक होर थॉट आना शुरू होया। बट इन बिटवीन फर्स्ट थॉट एंड सैकेंड थॉट यू विल फाइंड ए वेरी स्मॉल गैप, फ्यू सैकेंड्स का गैप, अते उस गैप के विच जदों के थॉट नहीं है, की है, सिर्फ एक वाचर है जो कि विटनेस कर रहे हैं, जो कि देख रहे हैं। वो वाचर कौन है? वो साड़ी आत्मा है, वो साड़ी बीइंग। सो इन दोज ग्लिम्प्स वी एक्सपीरियंस अवर बीइंग फ्री फ्रॉम थॉट्स। तो जितना जितना ये अभ्यास बढ़ाते जाओगे
ਉਤਨਾ ਉਤਨੇ ਉਹ ਗੈਪਸ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੈਪਸ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਵਸਾਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਰ ਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼, ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ। ਸੋ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਰ, ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸਵਾਰੀ ਕੀਜੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਅਚਾਨਕ ਪਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਟ ਦੇ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਥਾਟ ਆਵੇ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲ ਦੇਣੀ, ਕਿਹੜੀ?

ਜਦੋਂ ਇਹ ਥਾਟ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਖੋ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੋ। ਕਹਾਂ ਚਲੋ ਮਨ, ਰਹੋ ਘਰੇ, ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ, ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜੀਓ। ਉਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ ਐਨੀਵੇਅਰ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ ਐਨੀਵੇਅਰ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਬੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ। ਮਨ ਰੇ ਫਿਰ ਰਹੋ, ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜੀਓ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮਤ ਜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਰੇ ਫਿਰ ਰਹੋ, ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜੀਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ ਮਾਇੰਡ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਕਲੋਜ਼ਡ ਆਈ ਔਨ ਦਾ ਮਾਇੰਡ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਚ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆਏਗਾ ਫੌਰਨ ਲਾਈਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮਨ ਰੇ ਫਿਰ ਰਹੋ, ਟਿਕੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਜਿਤਨਾ ਜਿਤਨਾ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਵਧਾਓਗੇ, ਜਿਤਨਾ ਜਿਤਨਾ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਵਧਾਓਗੇ, ਉਤਨਾ ਉਤਨਾ ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਥਾਟਸ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਥਾਟਸ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਥਾਟਸ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਹੈ ਔਰ ਥਾਟਸ ਦੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਟਿਕਾਓ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਖਾਲੀਪਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋ ਡੀਪਰ ਲੈਵਲ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਲਿਮਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਪੋ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਬਾਡੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਈਟਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਰੱਬੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਨ ਦੌੜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਟਿੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਬੱਚੇ ਟਿੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਵਸਿਆ, ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਵਸਿਆ, ਖਿੰਨ ਪਲ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ। ਇਹ ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬਾਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਜਦ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਇਤਨੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕ ਜਾਏ? ਸੁਰਤੀ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਵੇ? ਉਸ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਆਖੋ ਬੈਠ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਟ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ। ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਦਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਬਹੁਤ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਹਾਂ ਚਲੋ ਮਨ, ਰਹੋ ਘਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਵਿਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੱਕ ਥਾਟ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਨੀਡ ਫਾਰ ਦਿਸ ਥਾਟ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਜੋ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਓਬਸਟੈਕਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਦਾ ਓਬਸਟੈਕਲ ਫਾਰ ਦਾ ਮਾਇੰਡ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਨਾਓ ਵਾਚਿੰਗ ਇਟ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਇਟ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਮਾਇੰਡ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਸੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਥਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਨੀ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੂਸਰਾ ਥਾਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਟ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੈਨ
उस तो बाद जो दूसरा थॉट है, कितनी देर तक दूसरा थॉट नहीं आएगा, वो टोटल साइलेंस का टाइम होता है अंदर, और उस साइलेंस दे विच स्टिल जो एक्सपीरियंस करने वाली जो साड़ी कॉन्शियसनेस है, फिर असी उसनों एक्सपीरियंस करते हैं. सो देन द एक्सपीरियंसर इज द वन विच इज एक्सपीरियंस्ड. सो दूसरा अभ्यास है मंद, और तीसरा अभ्यास है गुरु बाबा जी आखते हैं सुरति का, क्योंकि अगर दो इंसान गलबात कर रहे हैं, एक दी सुरत उत्थे नहीं है, ध्यान उत्थे नहीं है, अटेंशन उत्थे नहीं है, तो एक बंदा कुछ कही जाता है पर एक बंदा सुनदा सुनदा भी उसनु कुछ नहीं पता चलता. बाद अगर उसनु दूसरा इंसान पूछता है कि मैं की किया, तो वो बड़ा एम्बेरेस हुंदा है कि मैंने तो पता ही नहीं चलिया कि की किया है, क्योंकि सुरती उत्थे प्रेजेंट नहीं सी, ध्यान उत्थे प्रेजेंट नहीं सी, इस करके वो गल कही हुई भी असी रजिस्टर नहीं की. कई दफा असी सामने कुछ देखते हैं पर साडा ध्यान कितने हुंदा होर है, फिर भी असी देखने दे बावजूद भी चीज देखी नहीं होंगी, क्योंकि ध्यान कितने होर सी. सो तीसरी साधना है ध्यान. इस शब्द दे विच महाराज जी ने पहली ही लाइन च यह तीन गल्लां आखतियां, नाम जपण दे वास्ते जो मैथड है, सब तो पहला अपनी बॉडी नू साधो, शेप अप करो, इस दीयां हैबिट्स नू ठीक करो, इसनू मास्टर करो, इस दे उत्ते अपना कंट्रोल अचीव करो, सेंसेस दे प्लेजर जो सानू ड्रैग करदे हन उना उत्ते अपना कंट्रोल करो. दूसरा है माइंड, जिसकी मैं आप जी दी सेवा च अर्ज कर चुका हां, उस अभ्यास नू करो, अपने विचारां नू अलग बैठ के सिर्फ देखो. ए पहली दफा ए फिनोमिनन होएगा कि यू विल बी सेपरेट फ्रॉम योर थॉट्स, जस्ट वाचिंग देम. अते जो थॉट्स हन ओ ताही आ सकते हैं अगर उन्होंने को वाच ना करे. थॉट्स कैन ओनली अकर इन योर एबसेंस, अदरवाइज दे कैन नॉट. इफ यू आर प्रेजेंट वाचिंग, देन देर इज नो रूम फॉर द थॉट, बिकॉज द प्लेस इज ऑलरेडी बींग ऑक्यूपाइड बाई यू. सो तीसरी प्रैक्टिस है सुरती दी, क्योंकि अकाल पुरख वाहिगुरु साडे अंदर भी है, साडे बाहर भी है, पर वो नजर क्यों नहीं आता, नजर क्यों नहीं आता, साडी सुरती च नहीं आता. तो महाराज जी आखते हैं अपने जीवन दे विच एक नवी चीज पैदा करो, नवी चीज ग्रो करो, जेड़ी एक नवे किस्म की सुरती है, नवे किस्म की सुरती. उस दे लिए सिंपल लफ्जां दे विच मैं आखा, फिर मैं बाणी की लाइन भी आखांगा. महाराज जी आखते हैं अपनी सुरती की सुरती रखनी शुरू कर दे. सोचो पहला इसनू दास की अर्ज कर रहा, जिस तरह साडा बच्चा बाहर खेड रहा है ना, असी उसकी सुरत रखते हैं कि कित्थे है, किधर नू जा रहा है, किधर नू खेड रहा है. एक है साडी सुरती, कहिंदे हन सुरती दी सुरती रखो. बड़ा सटल अभ्यास है, हर वेले सुरती नू देखो कि सुरती कित्थे है. तो तुसी असी की अचीव करांगे, एक नवी सुरती जो सुरती नू देखदी है. पहला साड़ी सुरती नू कोई देखण वाला नहीं, कदे किते है, कदे किते है, कदे किते है, कदे किते है. नाउ एक होर सुरती डिवेलप हो गई है जड़ी सुरती नू देखदी है. उस दे लई ए टेक्नीक गुरु बाबा नानक देव जी महाराज दी है, कहिंदी सुर कहिंदे हन सुरती सुरत रलाई है एक. ए गुरु नानक साहब जी दे वचन हन, कहिंदे अपनी सुरत दे उत्ते सुरत नू रला दिओ, सुरत नू रख दिओ. सुरती सुरत रलाई है एक, अपनी सुरत दे उत्ते सुरत रखो. यह अभ्यास हर वेले करो, यानी अपने ध्यान का ध्यान रखो कि ध्यान कित्थे है,
क्योंकि जितनी देर तक ध्यान अते सुरती बहुत बारीक बहुत मान्यूटली अपनी सुरती नू अपने ध्यान नू नहीं देख सकते उतनी देर तक वो आत्मा जिही सूक्ष्म चीज नू नहीं देख सकते होनी चाहिए। उसके वास्ते ये अभ्यास है महाराज जी ने अपनी बाणी दे विच सानू जो फरमाया है आप जी की सेवा च मैं दसदा हां कि इसे ही शब्द दे विच गुरु साहब ने यह तिने चीजा आखियां। नंबर एक भांडा धोए बैस धूप दे हो अपने इस भांडे नू शुद्ध करो तौ दूधे को जावो। जे भांडा मैला है शुद्ध नहीं है उस दुध पाया कि खराब नहीं हो जाएगा। फिर कहिंदे हन दूध करम फुन सुरत समायण होए निराश जमावो। दूध कर्म कहिंदे जिहड़े तुहाडे कर्म हन ना कर्म की हन बोलना यह भी तो कर्म ही है ना। सारी इंट्रैक्शन जितनी भी है साड़ी ह्यूमन लाइफ दे विच ओ साड़े कर्म हन। केंदे ओ दुध वर्गे सच्चे सुच्चे पवित्र होने चाहिए हन दुध वर्गे साफ दुध वर्गे निर्मल कर्म हो। झूठ ना बोलिया जाए कौड़ा ना बोलिया जाए फिक्का ना बोलिया जाए होमे च ना बोलिया जाए किसी का दिल ना दुखाया जाए दुख ना दे किसे जी पत स्यों घर जावो। कहिंदे किसे नूं भी कदे तुहाको दुख ना पहुंचे तां तुसी पत दे नाल वाहिगुरु दे घर च जा सकदे हो। तुहातो अगर कोई शख्स हर्ट हुंदा है ते ओ निर्मल कर्म नहीं है दुध वर्गे कर्म नहीं है। कहिंदे तुहाडे कर्म दुध वर्गे होने चाहिए। सो दुध की है दुध वर्गे कर्म भांडा की है ए शरीर ए साफ सुथरा होवे फिर दुध कर्म जो हन दुध वर्गे ओ इस दे विच दुध पाया होवे फिर मक्खन कढ़न दे वास्ते असीं उस दुध नू जाग लगाने हैं। उस दुध नू जाग लगाने ना दही पाके कहिंदे उस दुध नू जाग किवें लगाना है ताकि वो दही बने। शुभ कर्म हो गया दुध शरीर हो गया भांडा हुन जाग लगाना है। कहिंदे सुरती दा जाग लगाओ सुरती दा जाग लगाओ जिहड़ी इस दुध नू तब्दील करके उस फॉर्म च कर देगी जिथों मक्खन ने निकलना है। रब है मक्खन और रब मक्खन दे वास्ते महाराज ने यह सिनेरियो साडे सामने रख्या है यह सिमली दित्ती है। कहिंदे सुरत समायण समायण का मतलब हुंदा है जाग लगाना। भांडा तुहे बैस धूप देवो तौ दूधे को जावो दूध कर्म फुन सुरत समायण। कहिंदे दुध तुहाडे पास आ गया शुभ कर्म वो है दुध फुन सुरत समायण। सुरती दी आदत सुरती दा अभ्यास एक ऐसा जाग है जिहड़ा तुसी लगा दो। हर वेले अपनी सुरती दी सुरत रखो कि सुरती की कर रही है सुरती की देख रही है सुरती की सोच रही है। सुरती दी सुरत रखो ध्यान दा ध्यान रखो ऐ दो गल्लां याद रखो सुरती दी सुरत रखो ऐ किवें होएगा। हुण लंगर छकदे हो ते लंगर असीं हत्थां नाल छक रहे हां दंदां नाल चबा रहे हां पर सुरती नाल की कर रहे हैं। सुरती कित्थे है नाल दी नाल भी कम कर लो लंगर मैं छक रहे हां सुरती कित्थे है। ते जे सुरती उत्थे लंगर नहीं छक रही ते सुरती नूं वापस लै आओ कि सुरती भी उत्थे ही प्रेजेंट होवे जिथे तुसी बैठे हो जिथे लंगर छक रहे हो ताकि तुहाडी सुरती उस टोटल जो एक्सपीरियंस नू एक्सपीरियंस करे कि तुसी बुरकी तोड़ रहे हो उसनू मूंह च पा रहे हो उसनू चबा रहे हो। सुरती शुड बी पार्ट ऑफ एवरीथिंग

सुरत समायण कहिंदे सुरती दा जाग लगा दियो दूध करन तुम सुरत समायण होए निराश जमावो कहिंदे इतना कुछ करन तो बाद कहिंदे जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा कहिंदे एना सारियां चीजां दी तैयारी साधना करन तो बाद नाम जपया जाएगा तो फिर नाम जपना है असि किवें ए मन इंटी हाथ करो फुन नेत्रो नींद ना आवे रसना नाम जपो तब मथिए इन विद अमृत पावो ए मन इंटी हाथ करो इंटियां जदों पंजाब दे विच बीबियां मधानी दे नाल दुध रिड़कदियां सन ते ओ रस्सी नू आखदे हन नेत्रा उस रस्सी दे दोने एंड्स दे उत्ते छोटियां छोटियां लकड़ी दियां गुल्लियां बनियां हुंदियां सन उहनां नू इंटी आखदे हन कहिंदे मन नू जदों रसना दे नाल नाम जपना है इस तरह पकड़ के रखना है जिस तरह दोने हत्थां दे नाल बीबियां ने ओ लकड़ी दियां इंटियां पकड़ियां हुंदियां सन ते रस्सी हुंदी है नेत्रा ए मन इंटी हाथ करो फुन नेत्रो नींद ना आवे नेत्रा ए है रस्सी ए है कि किते तुहानू नींद ना आ जाए पाव मन नू इतना घुट के रखना है कि मन तुहाडे ख्याल चो बाहर ना जाए तुसी एबसेंट माइंडेड ना हो जाओ इसका मतलब है कि नींद ना आ जाए फिर रसना नाम जपो तब मथिए इन विद अमृत पावो फिर कहिंदे हन रसना दे नाल वाहिगुरु शब्द दा नाम जो गुरु तो प्राप्त होया है उसनू जपना शुरू करो जदों भी वाहिगुरु शब्द आखना है उदों फुल अवेयरनेस दे नाल आखना है तुहानू पता होवे कि तुसी वाहिगुरु शब्द कह रहे हो और कहा है ऐसा ना होवे कि एक दफा भी वाहिगुरु शब्द कहा होवे और तुहाडी अवेयरनेस दे विच ना होवे तुहाडी सुरती विच ना होवे हर वक्त जदों भी वाहिगुरु शब्द आखना है वो ध्यान दे नाल आखना है और उसनू सुनना है ताकि तुहानू पता लगे कि तुसी वाहिगुरु शब्द आख्या है पहली स्टेज है वाहिगुरु दे नाम जपण दी सिमरन करन दी वो है बोल के उसनू मेरी सजेशन यह है कि 6 महीने तो लैके 9 महीने या साल तक पहला साल जो है वो बोल के अभ्यास करना चाहिए है बोल के ताकि हर बार तुसी बोलो उसका पेस बहुत तेज नहीं रखना माला ले लो वड्डी या छोटी लेकिन उसका जो पेस है वह बहुता ज्यादा तेज ना होवे कि बहुत तेज तेज तेज तेज कहिंदे ऐसा ना होवे कि माइंड जो है वह उसके विचों कितने होर पासे चले जाए हर दफा वाहिगुरु शब्द कहन दे वेले पूरी अलर्टनैस दे नाल पूरी अवेयरनैस दे नाल वाहिगुरु प्रेम दे नाल आखना है और जिस चीज नू वाहिगुरु क्या है वो है साडे अंदर साडी आत्मा जोत जिंदगी जीवन दी रौन जो सबना दे विच है उस वस्तु दा नाम है वाहिगुरु और उसनू अपने ख्याल च लैके आना है आफ्टर ऑल असी किसे वस्तु नू किसे सबस्टेंस नू किसे ही होंद नू ही वाहिगुरु कह रहे हैं ना उस होंद नू भी अपने मन च लियाना है और बिल्कुल अवेयरनेस दे नाल ख्याल दे नाल ध्यान दे नाल बेसुरती दे नाल वाहिगुरु नहीं आखना तो इस तरह कीता होया जाप जो है अगर हर रोजाना असी अपना एक टाइम सेट कर लिए कि 1 घंटा करना है अगर असी साल भर कर जावांगे तो साल भर दे विच इस तरह कीता होया अभ्यास सानू आत्मक मंजिलां सुरती दे मंजिलां दे विच किते दा किते लै जाए तो कि असी 1 साल भी इस विद्या दे वास्ते इस प्राप्ति दे वास्ते डेडिकेट नहीं कर सकते कि यह साडा फर्ज नहीं बनता कि बाबा जी की सारी बाणी च यही गल आखी गई नानक के कर केवल नाम सिर्फ नाम ही नाम है फिर असी कदों जपांगे नाम तो बिना महाराज कहिंदे नरक कहीं ना लेके सो ये जो विचार आप जी दे सामने रखे हन इन्हां नू आप द्वारा रिकॉर्डिंग्स दे विचों सुन के भी रिवाइज कर सकते हो 3 लेवल्स हन जो मैं आप जी दी सेवा च रख चुका हां काया नू साधना है और मन दे उत्ते निगाह रखनी है थॉट्स दे उत्ते निगाह रखनी है

आख्या जे तू अकल लतीफ ता काले लिखना लेख कोई पाप ना कर कोई ऐसा उपद्रव ना कर तू मनुख तू देवता बनन लई इथे आया ऐसा ना होवे मनुख तू पशु बन के जावे जिस वाहिगुरु ने तैनू अमोलक श्वास बख्शे चंगे गुण धारण कर जे औगुण वेखदे हन ता अपने अंदर जाती पा ते जे सिफत करनी है उस्तत करनी है ता अकाल पुरख वाहिगुरु दी कर आप नड़े गिरीवान में आख्या अपनी बुकल विच नीवा सिर पा के वेख विचार कर जो जिस माया दे लोभ ने तैनू पाप कर्म करन लई प्रेरणा दिती है ओ माया तेरी कितना कुछ सहायता करेगी ए रिश्ता आद पाप कर्म जो फल तू प्राप्त कर रहे हैं ए माया तेनू सुख नहीं देवेगी ए माया नरक बन जाएगी आप नड़े गिरीवान में जो कुछ तू कर रहे हैं जो कुछ हृदय रूप पट्टी ते लिख रहे हैं उनु वाच उनु वेख तू की कर रहे हैं इसलिए बाबा फरीद जी कह

बिरद अवस्था एक मनुख की बिरद अवस्था है। ते बाबा फरीद जी दे पास आके बेनती कीती, फकीर साईं मैनू मुक्ति दा उपदेश दियो कि मेरा संसार ते आउणा सफल हो जावे। ये गल सुन के उसनू समझाउण लई बाबा फरीद जी ने सलोक उचारण कीता, फरीदा जां तू खट

जोर पकड़ रही है, तू मौत दे नेड़े जा रहे हैं, जिस वक्त तेरे श्वास परे पूरे हो गए ता तैनू फटे ते लद के शमशान भूमिका विखे लै जाणगे। इसलिए भाई आना उन्हां दा ही सफल है जिन्हां ने अपना जीवन सेवा सिमरन परोपकार कीता है। बाबा फरीद जी कहंदे ने, देख फरीदा जोथिया दाड़ी होई भूर, अगों नेड़ा आया पिछा रहा दूर। हे भलिया लोका निगाह मार के देख, जो गल तेरे पर आके प्राप्त हुई है, दाड़ी तेरी कक्की दाड़ी चिट्टी हो गई, पर जो तू संसार ते आके करना सी ओ अजे तक कीता नहीं, अजे सोची रहे। इसलिए भाई जदों अंत समा आ जाएगा उस वेले तू कहेगा भाई मैनू सत्संग कर लेन दियो, उस वेले ना तू कहन जोगा ते ना उस वेले तैनू कोई समा मिलना। इसलिए भाई अपनी हिरदे रूपी पट्टी ते उजले कर्मा दे ले।

मरन वर ले जासी परनाए। ओ भाई एक दिन ए पांच भूतक शरीर तैनू त्यागना ही पवेगा। ओथे तेरियां सियाणपां कम नहीं आउणी। एक गुरु का सिख जो सतगुर दे पाने विच अपना जीवन बतीत करदा सी, अज एक प्रेमी आया विचार वटांदरा होया ते गुरु के सिख ने आख्या, भाई गुरु नानक दी बाणी कह दी है कि जो होनी है वह प्रबुल है, जो अकाल पुरख ने लिख दिता वह होके ही रहिंदा है। मनुख दी सियाणप चतराई सियाणपां किते काम ना आई है, तुठा साहेब जो देवे सोई सुख पाई। जो अकाल पुरख वाहिगुरु ने लिखिया वह होके ही रहिंदा है। ता ए गुरु का लाल कहने लगा, महाराज जे पहला पता लग जावे ना ते मनुख अपना बचाव कर सकता है, कोई वड़ी गल नहीं। मैं ए गल नहीं मनदा, मनुख नू पता होवे मुसीबत आ रही है, कोई ना कोई अपने बचन दा उपराला कर लेंदा है। जदों इसने ना मनी तो गुरु का सिख कहन लगा, भाई आओ सामने ताली देख रहे हैं, आज तो 7 दिन बाद तैनू उत्थे फांसी चाड़िया जाना है, जा तू अपना बचा कर ले जे कर सकता है। तो महाराज मैं पूरा जतन करांगा, मैं वेखना किवें कोई मैनू इत्थे सूली चढ़ गए। घोड़ा उसके कोल सी, ज्यों दौड़

लगा रात दिन एक करके अपने वालों दूर तो दूर चला गया पर कुदरत ने मौत ने उसनू घेर के उथे ही ले आउंदा जिथों तुरिया सी। सत संगत बोलो श्री वाहे सवेर का।

जिस पुरुष ने जवानी विच कुछ नहीं किया, क्योंकि फरीद जी कहते हैं भाई बचपन खेडां विच बीत गया तो जवानी सिमरन विच बतीत कर लैंदा, क्योंकि जवानी विच देह अरोगता हुंदी है ते फिर बिरध अवस्था विच जदों मनुख पैर रखदा है तां फिर इस देही नूं रोग लग जांदे हन ते रोग काल दी निशानी है। इसलिए फरीद जी कहंदे न काली जिनी ना रावया, जिन्हां ने जवानी विच नहीं जपया उन्हां नूं भाई बिरध अवस्था विच भी चेता नहीं आउंदा, भाव ओह नहीं जप सकदे।

सेवा लैन कोई संगत नवी आई हुंदी है केवल बोल के चारे विशेषताइयां लंघदे आ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पहली विशेषता ही धरती ते जिन्ने अवतार आए

पंचमी विशेषता ही श्री गुरु ग्रंथ साहब नाल तुसी साध संगत जी गल्लां भी कर सकते, कई हैरान हो जाएंगे।

प्यास लगी पानी दी पाल कीती एक खूह नजर आया उस खूह दे कोल जदों गए तां देखिया कि पहला भी कुछ लोग खलोते हुए पानी पानी कर रहे सन क्योंकि पानी बहुत नीवा सी खूह दे विचों ओ पानी कढ़ना बड़ा औखा सी। संत ज्ञानेश्वर अते नामदेव जी पहुंचे खूह दे कोल पानी देखिया बहुत डूंगा है बहुत नीवा है पानी कढ़न वास्ते कोई इन्नी रस्सी भी नहीं ता संत ज्ञानेश्वर जेड़े के पहुंची हुए महापुरुष सन अपनी शक्ति दे नाल खूह दे विच उतरे पानी पीता पानी फिर भर के शक्ति दे नाल खूह तो बाहर आए चेलिया नू प्याया कुछ लोकां नू भी प्याया ते नामदेव नू कहा नामदेव तू भी पानी पी ले। नामदेव जी कहन लगे मैं पानी नहीं पीना जेड़ा तुसी लेके आए हो। संत ज्ञानेश्वर कहन लगे फिर नामदेव तू भी शक्ति दा मालक है तू भी भगत है तेरे विच भी शक्ति है तू आप अपनी शक्ति दे नाल खूह दे विच जाके पानी पी के ते खूह दे बाहर आ जा। ए सुन के नामदेव जी कहन लगे संत ज्ञानेश्वर नू मैं पानी ता पीना जे मेरा रमैया मैनू पानी पियावे नहीं ता मैं पानी नहीं पीना क्योंकि मैं ओदे नाल प्यार करना ते ओदा फर्ज बनदा है कि ओ साडी प्यास बुझावे। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਉਸੇ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ

जिथे अंब लगा हुए कोकल जा बैठ दी अते खुशी दे नाल गान लग पैंदी है। इसे तरह मेरे रमैया जिवे धरती पानी नाल प्यार कर दी है, बरसात नाल पवरा फुल दे नाल कोकल अंब दे नाल।

तरनी के औरत नु कांत पति जिस तरह औरत पति नाल प्रीत कर दी है, इसे तरह है परमेश्वर मेरे रमैया।

मालिक को जैसे खीर बाल है जिवें बच्चा खीर के दुध नू दुध दे नाल प्रीत करदा है चातृक मुख जैसे जल तरा।

हर था जिस तरह तू है इस तरह इस नामे दे मानवे च भी ए परमेश्वर तू है गए ए नामदेव भी तेरे नाल इन्ना प्यार कर दे जिवें होर साधक सिद्ध चाहते ने कि तेरे दर्शन होने।

क्योंकि गुरु दी लोड़ सी। कहन लगे मैं अमृत वेले उस रस्ते ते जाके लम्मा पै जावांगा जिस रस्ते तो स्वामी रामानंद रोज सवेरे अमृत

कबीर साहब नू गुरु दी लोड़ है। अधी रात घरों उठे गंगा घाट जा पहुंचे, जड़िया पौड़िया तो स्वामी रामानंद उतरिया करदे सन। कबीर साहब मुंह सिर लवेट के उन्हां पौड़िया ते जाके लम्मे पै गए। इस कथा नूं भाई गुरुदास जी ने अपनी पौड़ी दे विच बयान कीता है। आप स्वामी रामानंद बारे इउं अपनी पौड़ी विच लिखदे हन।

अमृत वेले उठ के जांदा गंगा नहावण ताई स्वामी रामानंद अमृत वेले उठ के रोजाना ही गंगा इशनान करन वास्ते

दे जाए के लम्मा पया कबीर ते थाई जेड़े रस्ते तू स्वामी जी ने लंघना सी उस रस्ते ते कबीर साहब जाके लम्मे पै गए।

बड़ी मस्ती विच राम राम करदे तुरे आ रहे ने। गंगा दियां पौड़ियां उतरन लगे, देखे आ पौड़ियां दे विचकार कोई सुता होया है। रस्ता नहीं सी क्योंकि कबीर लम्मा पिया सी। स्वामी जी कोल होए अपने पैरां दी, स्वामी जी कोल होए अपने पैरां दी ठोकर लाए कबीर दे शरीर नू। ते कहंदे ने भांडे विच जेड़ी चीज पाई होवे ओही निकलदी। जे किसे भांडे विच दुध पाया है तां दुध ही निकलेगा। जे किसे भांडे विच शराब पाई है तां शराब निकलेगी। पर जेड़े महापुरुष ने इन्हां दे विच तां परमेश्वर वसदा है, परमेश्वर दा नाम वसदा है तां नाम ही निकलना। स्वामी रामानंद ने पैर दी ठोकर लाई कबीर दे शरीर नूं ते नाले के उठ राम के राम कहो। ए सौण दा वेला नहीं, ए नाम जपण दा वेला है। भाई गुरदास जी आप बयान करदे नहीं।

ऐसा शुरू किए स्वामी रामानंद पैर लगा के एक कहन दा के उठ राम के राम को भाई गुरुदास जी कहंदे ने राम कबीरे भेद ना पाई राम विच ते कबीर विच कोई फर्क ना रहा। इशनान करके स्वामी रामानंद चले गए। कुछ समय बाद कबीर साहब स्वामी रामानंद दे आश्रम वाल तुर पए। स्वामी रामानंद जदों इशनान करके जांदे सन दरवाजा ढोके चौंकड़ा मार लेंदे सन और मन करके परमेश्वर नूं इशनान कराया करदे सन। इशनान कराण अज भी बैठे मन करके कपड़े भी पवाए सिर ते ताज भी रखे आ मुकट कलगी भी रखी पर हार पाना भुल गए। कबीर साहब स्वामी रामानंद दे दरवाजे दे बाहर बैठे। उस पासे स्वामी रामानंद सिर ते मुकट रख बैठे ता ख्याल आया कि मना हार ते गल विच पाया नहीं हार जो तक ना पावा पूजा पूरी नहीं होनी जे ता हार मुकट ला के पावा ताई सोभा वाली गल नहीं मुकट दे उत्तों हार पै नहीं सकदा क्योंकि हार छोटा ते चिंता विच नहीं कि सिर ते सजाया मुकट लाना ठीक नहीं ते मुकट दे उत्तों हार पै नहीं सकदा किवें करा ता कबीर साहब बाहर बैठे सन उन्हां जान लिया कि स्वामी रामानंद क्यों परेशान ने क्योंकि जिहड़े नाम जपदे ने उन्हां विच ते परमेश्वर विच भेद नहीं रहिंदा ओ एक दूसरे दे मना दियां जानदे ने ते कबीर साहब ने बाहरों कहा स्वामी जी हार जी मुकट तो नहीं पै रहा ते हार दी गंढ खोल के हार गल विच पा के फिर गंढ मार दी। आवाज सुनी स्वामी रामानंद बड़े हैरान होए उठ के बुआ खोलिया बार कबीर साहब बैठे। स्वामी जी कहन लगे तू कौन है। कबीर साहब कहन लगे मैं कबीर हां तुसा मैनू गुरु दीख्या दीती। स्वामी जी कहन लगे मैं ता तेनू गुरु दीख्या दीती नहीं अपना चेला बनाया नहीं। ता कबीर साहब कहन लगे स्वामी जी तुसी गंगा ते अमृत वेले इशनान करन गए मैं पौड़ियां ते लम्मा पिया सी तुसा अपना चरण मेरे शरीर नू लाया ते कहा सी उठ राम के राम को उदू दा मैं आप दा सेवक बने। ए सुन के ते स्वामी रामानंद कहन लगे कबीर तू सेवक नहीं तू ते मेरे नालों भी अग्गे चला गया है तेरे विच ते राम विच कोई फर्क नहीं रहा क्योंकि तू ते मेरे मन दी भी गल जान लई है। और स्वामी रामानंद जी दा एक शब्द गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज है कत जाइए रे कर लागो रंग। ऐसा असर होया गुरु दे मिलन दा के कबीर विच ते राम विच कोई फर्क ना रहा।

तीसरे भगत भगत धन्ना जिन्हां बारे भाई गुरदास जी अपनी पौड़ी विच आप बयान करदे ने।

पर तन्ना हाथ जोड़दा मिन्नता करदा मत्थे टेकदा कहिंदा ऐ परमेश्वर मैं अनपढ़ा मैनू ए नहीं पता तेरी अरदास किवें करी दी पर मैं तेरे नाल बड़ा प्यार करना कृपा कर ऐ रोटी खा हुण तन्ने नू की पता के लोग ठाकरां नाल भी ठगी करदे थोड़ी जी चीज पुजारी मूर्ति दे मुंह नू लगांदा है अद्धी आप रख लैंदा है अद्धी घर वाली लै जांदी तन्ना ए समझदा है कि पत्थर दियां मूर्तियां सब कुछ खांदियां ने सब कुछ पीदियां ने इस करके

के जेड़ा भोला भाव है वो परमेश्वर दे नाल मेल करांदा है। ए सुन के ऐ भाई इस कथा तू ए सिख्या लो कि चतराइयां दे नाल परमेश्वर नहीं मिलता, परमेश्वर जेड़ा है वो प्यार

परमेश्वर नू रोटी खवाई तन्ने ने भी खा ले। परमेश्वर कहन लगे लै भाई तन्ने आ रोटी तां असीं खा ली

कोड़ी नुके ऐ भगवान पैरी सोनी जुती पाई होवे सोना सूट पाया होवे घर विच अनाज भी होवे गां ते मज भी होवे ते किधरे आना जाना पै जावे ते पैदल तुर के जांदा फिर आदमी चंगा नहीं लगता कपड़े चंगे पाए होन ते तुरिया जावे पैदल चंगा नहीं लगता आना जाना भी पैंदा है दूर इस करके कृपा कर एक ताजन तुरी चंगेरी एक सोनी जी घोड़ी भी दे ताकि किधरे आना जाना होवे ता ओ सफर मैं

जपिया प्यार कीता ओ तन्ना अनपढ़ नाम जपन दे करके दर्शन करन दे करके किथे जा पहुंची है ओ तन्ना अनपढ़ बाणी उचारन लग पे उस तन्ने ते तन गुरु अर्जुन साहब ने होर कृपा की थी तन्ने दी बाणी गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज की थी तन्ने नु अपने नाल बठा लिया जद भी कोई इंसान श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नु मथा टेकदा है ओ भगत तन्ने नु भी मथा टेकदा है भगत तन्ना जी दे शब्द गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज ने जेड़े उपदेश करदे ने ऐ भाई उस परमेश्वर दी बंदगी करो सारयां दी उपालना करन वाला है तू बंदगी कर तेरी भी उपालना करेगा दुनिया दी चिंता छड़ नाम दी चिंता कर क्योंकि उदा नाम बड़ा प्यारा ते बड़ा सोहना है।

आज पूर्णमासी दा ए समा ते पूर्णमासी दी ओ जिस दिन सर्दी बल्दी दुनिया नु तारन वास्ते मेरा धन गुरु नानक प्रगट होया करो अरदास भाई ते गुरु नु नेत्रां च विसाओ हिरदे ते विसाओ।

पिताजी मेरे नंकारी वीर नु ना मारो, मेरे रब्बी वीर नु ना मारो। पर मैं ते कालू दे अंदर गुस्सा सी। बेबे ने कहा पिताजी 20 रुपये की होते, 20 रुपया बदले मेरे नंकारी वीर नु कुछ ना खो। अज ओ मेहता कालू पश्चाताप कर रहा है, सर जावण ए हाथ जिना हथां नाल मैं नानक नु चपेड़ा मारी। राए मेरी अरदास सुन के कदे भी नहीं आवेगा नानक। राय बुलार दियां पुब्बा निकली, कालू हुण तां रो रो के अखां दा पानी भी सुक गया। राय बुलार दीवाना होया फिरदा है गुरु नानक दे प्यार, गुरु नानक दे प्यार। लोकी कहंदे राय नु की हो गया, पर राय बुलार दुनिया नु मुखातब होके कहंदा की

अरदास, सारी रात अरदास की थी। अमृत वेला हो गया, बेबी ने सोचे घर विच दूध है, माता बेसुध पई है, दूध कौन रिड़केगा। फिर बेबी उठी, सुबह उठ के पैन इशनान कीता, करदी पाठ ते दही रिड़काउंदी है, दही रिड़के सोना मक्खन कढे। बेबे ने अपने सुंदर हाथ दे उत्ते जिसले चिट्टा चिट्टा मक्खन रखेया, बेबे नू फिर अपना वीर याद आ गया। वीर वे बचपन विच वी मां कहंदी सी ना, नानकी तेरा वीर कुछ नहीं खांदा पींदा, इहनू कुछ खिला। वीर मैं अपनी तली उत्ते मक्खन रख लैंदी, ते कहंदी सां वीर मैं अखां पहले खोलदी आं कि तू पहले मक्खन मुंह च पांदा है। ते बड़े प्यार नाल तू आके निमाड़ी भैण दे हत्थां तू मक्खन चुक के मुंह च पा लैंदा। अज वी ओही भैण वीर आए मक्खन तू खा, मक्खन तू खा, तली उत्ते मक्खन पिया है। बेबे दे नेत्र बंद हो गए, निमाणा मन उड़िया पहुंच गया। इधर मेरे धन गुरु नानक सती पातशाह अमृत वेले कीर्तन जुड़े हैं, नेत्र खुल गए। मरदाने कीर्तन की समाप्ति कर दी। बाबा क्यों? हजूर कहन लगे बेबे नानकी भी याद कर दी है। ओ सते पातशाह किथे नानके आना ते किथे मक्का मदीना, इतनी दूर दी आवाजा किवें सुन लेंदे हो मेरे सते पातशाह? हजूर कहन लगे हां मरदाने तारा भी कई तरह दियां हैं। एक तार जेदे विच आरती लोग चिट्ठियां परो के रखदे सन, पुराना फैशन, अजकल तो फाइलां बन गई न पुराने आरती तार दे विच चिट्ठी परो के रखनी, ओ भी तार सी। मरदाने एक टेलीग्राम दी तार, मरदाने एक राग दी तार है, ए जरा कीर्तन हुंदा है ना ए भी तार नाल हुंदा है। तार किथे है जोड़ी, ए भी तार है, पर मरदाने एक तार होर भी है। बाबा हो ही दस दो तो मेरे सतगुरु जी मरदाने नूं उपदेश देन देन, किसे गुरमुख ने लिखिया है कि तार विनदी चीजां परोंदी है, तार विनदी चीजां परोंदी है, जेड़ी चीज उस अगे टिकाई जांदी, तार विच ही शब्द परोके ते खबर देश परदेश पहुंचाई जांदी, तार विच ही राग दी लड़ी बन के राग तार सुर तार मिलाई जांदी। पर बिना इना दे तार एक होर भी है, ओ सीने विन भी चित चुराई जाती। ओ केड़ी तार है जो बेबे नानकी ने भेजी? मरदानिया नेत्र बंद कर छेती पहुंची, मरदाना अगे ही चाहुंदा सी 12 साल तू विछड़े आया सी भई अपने बच्चियां तू, नेत्र बंद कीते खोल दे जो खोले की तकिया मरदाने ने कि मेरा धन गुरु नानक नानकियाने दियां गलियां च पिया जांदा है। आखो सही वाली, पर मरदाना काला है, 12 सालां तो बाद घर आया है, एना कर्म काला है। हजूर कहन लगे मरदाने काल ना कर, आस्ता आस्ता तुर ते नाले कुछ जप। दाता जी की जपां? तो बाबा जी ये बचन करदे सन कि भाई जिस वेले गुरु नानक तरंडी आया ते हजूर ने मरदाने नूं कहा, मरदाने ए पढ़ की

मूसले धार बारिश शुरू हो गई। बाबा जी ब्रज लगा के अड़ोल बैठे हैं, आसे पासे पानी पानी हो गया, पर संगत भी जुड़ी है। तो राय बहादुर नारायण सिंह जी राधा स्वामी ख्याल दे सन, कौन बैठे सन बाबा जी दे संगी सरदार हरचंद सिंह जी कमिश्नर साहब। राय बहादुर नारायण सिंह ने कहा, हरचंद सिंह ए रब बैठा है, कुछ नहीं भाई, ए रब बैठा है, रब बैठा है। क्यों? जेड़ा रब दी रजा विच आ गया और रब है आखो श्री वाहे। रब बैठा प्यारी सास संगत, बारिश होई खड़ो गई, समय सिर कीर्तन दी समाप्ति हुई, बाबा जी दे उठे सारे बस्तर पानी दे नाल चोभा चोभा अंदर चले गए। संगत अपने अपने घरां नूं बाबा जी ने बुलाया, हरचंद सिंह ने कमिश्नर साहब अंदर गए, बाबा जी नाले टहलते नाले मुस्कुराते हैं, ते नाले क्या हरचंद सिंह जी पातशाह। बाबा जी कह लगे, अज सौरे इंद्र ने अपना पूरा जोर लाया है भी इन्हों गुरु नानक के चरणा तो तोड़िए, आखो श्री वाहे। इंद्र ने अज पूरा जोर लगाया है, ते बाबा जी कहन लगे, हरचंद सिंह जिन्हों का मन गुरु नानक नाल जुड़ गया है ए इंद्र की कर सकता है, आखो श्री वाहे। जिन्हों का मन गुरु नानक नाल जुड़ गया इंद्र नहीं तोड़ सकता, तो सचमुच अज तुहाडा भी मन गुरु नानक नाल जुड़े, आखो श्री वाहे। जो इस रात दे समय बारिश हो रही है तो आप इथे आके जुड़े हो प्यारी साध संगत, ते गुरु नानक दी याद विच ते अज पूर्णमासी दा समागम, अज दर्शन कीते आ पूर्णमासी दा, नाम लैंदे आ मन नानक सर चला जांदा है, खुशी ना। अज जिथे बेंत संगतां जुड़ियां, बेंत वड्डी पूर्णमासी है, बेंत संगतां दूरों दूरों दिल्ली देहरादून होर दूरों दूरों संगतां अमृतसर तो पहुंची, ते मेरे तन गुरु नानक की याद जुड़ी है। तो आओ प्यारी साध संगत, दास उथे तो नहीं पहुंच सकता, उथों तो आ गया मालक के हुक्म अनुसार, पर अज इतने दर्शन करके भी नानक साहब के दर्शन हो गया, खुश श्री वाहे। तुसी सारे जुड़े हो, तन हो आप, पर ए तनता योग सानू किसने बनाया है, प्यार नाल आखो तन गुरु जगत जलंधे नूं ठंड पाण वाले मेरे बाबे ने अज मेहर करके तुहानू भाई अपने चरणा नाल जोड़ लिया, जुड़े हो तुहाडा जुड़ना सफला, जितना समा जुड़े मुबारक है तुहाडा जुड़ना, पुन वध गए गुरु दियां मेहरां प्राप्त करके अपना जीवन सफला कीता है। तो आओ प्यारी साध संगत, हुण कीर्तन दी समाप्ति करदा हां। राय बुलार उत्ते गुरु तुठा है, दर्शन होए फिर प्यार चाके पढ़दा है कि हाँ क्या सराही किरम जंत वड्डी तेरी वड्या, दाता भी वड्डा ओदियां वड्याईयां भी वड्डी। तो आओ प्यारी साध संगत, हन हन गुरु प्यारे सरदार करतार सिंह जी सरबत परिवार जिन्हां नूं भाई बाबा जी महापुरशां दी संगत होई ते मिलिया कि गुरु नानक दा प्यार, आखो श्री वाहे। ओ आप तुसी तक ही रहे गुरु नानक दी सेवा, गुरु नानक दा सत्कार, ए महापुरशां दी संगत है। जिथे गुरु दी सेवा है भाई उथे किसे चीज दी कमी, तो ए मेहर है गुरु दी। प्यारी साध संगत किस तरह मन प्यार जुड़े है, और इथे

विषमाद नाद विषमाद वेद विषमाद जीव विषमाद भेद विषमाद रूप विषमाद रंग विषमाद रागे फिरे जंद विषमाद पौन विषमाद पानी विषमाद अग्नि खेडे बिडानी विषमाद धरती विषमाद खानी विषमाद साद लगे प्राणी विषमाद संजोग विषमाद वजोग विषमाद

राग गौड़ी मालवा विच ऋषभ धैवत कोमल ते मध्यम तीबर लगदा है। इस राग दे आरोह विच निषाद अते अवरोह विच धैवत वर्जित हन। इस राग दी जाति शाड़व शाड़व, वादी ऋषभ, संवादी पंचम अते समा दिन दा चौथा पैर है। इस राग विच हर नाम लेहो मीता लेहो शब्द दा गायन कर रहे हैं डॉक्टर गुरनाम सिंह।

कदी लोधी पठाणा दा गुलाम रहा और इन्हां ने हिंदुस्तान दे लोकां ते बड़े जुलम भी कीते और हिंदुस्तान दे लोग एक गुलाम सन मुगलां दे दूसरा जातां पातां विच ऊंच नीच विच वंडे हुए सन इस करके इन्हां दे विच एका नहीं सी ब्राह्मणा दा बहना उठना वखरा शूद्रा दा बहना उठना वखरा जिस वक्त औरंगजेब दा राज हिंदुस्तान ते होया ता इसने

वो है इस्लाम धर्म। औरंगजेब ने हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाना शुरू किया, मंदिर तोड़ने शुरू किए। उस वेले कश्मीर के ब्राह्मण श्री आनंदपुर साहब

अपना सिर दे के हिंदू धर्म की रक्षा की। जिस वेले गुरु तेग बहादुर साहब शहीद होए, उस वेले भाई जैता उस जगह खड़ा सी, वो गुरु तेग बहादुर साहब का शीस लैके दिल्ली तो लुकदा छिपदा आनंदपुर साहब पहुंचया। ता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज छोटी उम्र है, भाई जैते नूं गल ना लगाया ते पुछया, भाई जैता जिस वेले साडे पिता शहीद होए उस वेले दा अखी डिठा सानू हाल सुना। भाई जैते ने कहा, पातशाह मुगलां ने यह कहा सी, अगर कोई गुरु दा सिख है ते गुरु दा सीस और ताड़ लै जावे, पर कोई सामने ना आया, सारे डरदे सन, गुरु नूं मन्नण वाले ते बहुत सन, पर सामने कोई ना आया। उस वेले गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने गर्ज के कहा, मैं एहो जिहा रूप सिखां नूं देवांगा कि हजारां विच खलोता होया भी वो अपने आप नूं लुको ना सकेगा, किधरे जुल्म हुंदा वो देख ना सकेगा। उस वेले गुरु साहब ने फैसला किया कि मैनू हुण सिखां नूं नवा रूप देना पवेगा। ए हिंदुस्तान दे लोग अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते, मुगलां दे गुलाम ने और जातां पातां विच वंडे होए ने। अगर इन्हां नूं अणख वाला जीवन देना है तो सारियां तों पहला जात पात खत्म करनी पवेगी। इस मकसद नूं लै के विसाखी वाले दिन आनंदपुर साहब बड़ा वड्डा इकट्ठ कीता। उस इकट्ठ दे विच 80,000 दे करीब संगत इकट्ठी हुई और गुरु साहिबां ने सिखां कोल सिर मंगे, पांच सिर मंगे, और ये जेड़े पांच सन कोई उच्चियां जातां दे नहीं सन, कोई जट सी, कोई नाई, कोई छीबा, कोई झीवर। सतगुरां ने इन्हां जातां नूं मिला के एक नवा रूप दिता, खालसा। और इन्हां नूं जद अमृत छकाया ते कह दिता उन्हां पंजां नूं, जिहड़ा जट सी उहनूं कहा तू हुण जट नहीं, जिहड़ा नाई सी उहनूं कहा तू हुण नाई नहीं, जिहड़ा छीबा सी उहनूं कहा तू छीबा नहीं। इस तरह बाकियां नूं वी कहा तुहाडी हुण कोई जात नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, तुसीं इक बराबर हो। अज तों तुहाडा नाम सिंह है, ते सिंह कहिंदे ने शेर नूं, तुसां शेरां दी तरह जीना है।

पखंड नहीं, एक खालसा नाम दिता। पर नाल कुछ गल्ला भी कही, खालसा कौन है, खालसे विच की खासियत होनी चाहिए है। जे एक खालसे विच सारियां गल्ला ने ताऊ खालसा है, ते ओ गल्ला गुरु साहिब जी।

निकल के बची और हरि सिंह नलुआ दा जिथे तंबू लगा उथे जा पहुंची। अगे पहरे ते दो सिंह खड़े ने त्यार बर त्यार, उन्होंने बाणों नू देखिया

सिंह कहन लगे बीबी कोई जरूरी काम है। कहन लगी हां। एक सिंह कहन लगा तू इथे खड़ी हो मैं पूछ के आ गया। थोड़ी देर बाद पहरेदार सिंह वापस आया। कहन लगा बानो तंबू अंदर चली जा, हरि सिंह नलवा इंतजार करते। ए बानो